सुखी ब्रह्म न कोई एक घर माठिए दलित्री अति थिए बालक चीन पुत्र उनका आपू दुई दंपति सलाह करी ज्येष्ठ बाबू तीरा भो हर्षई थियो सुजन हर्षई थियो मन

0: दुर्गा प्रसाद सेवापति कानून चौक साहब सुनखानी सुनसारा सुदामा की नारी करछ बिन भारी विपत्तिले पति छे जाई विनती कर चिंता पिडरले गुरु देवता राजा अरुपन भला मान सका निगान खाली है बंकन कहीं ज्योति समना देवू के सौगर मन देवत चंगा करिकन मिलंचु बारी का हर्षित मुलाका नगर में बिच्छा बर्तन में विचार मुटुबे स्तंभ जमा कर दी सही स्तंभ बली गए प्रयोजित पूछे द्वारिका माँ
1: नारायण
0: जन्यो बालका ओ जन्यो बालका ओ जगा

नारायण हो चिनवाने देखी झेल जल पड़े का बाबू बसी देवी दुबई झेल में छरसरी जन्म सके फिर कंस ले मार्चा भन्नी उता तीर भैया नारायण बैला को चलेना।

0: कश्मर गरी कुजे राहन मारो ये दिया कामा सीता जी कन बेटी भाई काना फेरा गंगा कई पाशा
1: उन्हीं आकलन बोल सकता है।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

हाईटेक नर्सरी में उत्पादित गुणस्तरीय फलफूल जड़ीबुटी विभिन्न बिरुवा को भरपर्दो गंतव्य कल्पवृक्ष बहुउद्देश्य नर्सरी फार्म। यहाँ लोड सल्ला, टिमूर, कागती, सुन्तला, जापानीज हलुआ बेद, जापानीज नस्पति, रेड किबी, ग्रीन किबी, मेकाडेमिया लगायत विभिन्न फलफूल तथा जड़ीबुटी जन्य बिरुवाहरू उपलब्ध छन्। सीजन अनुसारका बिरुवा खरीद गर्न आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। संस्थागत खरीदमा

रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्जको रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीति कथा।

इजपनी एकलाई कतारे हाले उकिचुना लाई मुबांचु मेरी राधा किसना येरी मुकतारे हाले उकिचुना Hello, lai bato Radha Krishna jani, masulare bato Ramu jani. Bhuvale pani.